0: मैं पाचू
1: ईटी विन्यो और रेडियो ईटी विन्यो ईबी ईबी काई और रेडियो के कैन
2: कमांडर मिक्सोला
3: या

0: और मैं पाचू
1: ईटी यूनियो और रेडियो पियम चुन के वो एर क्वारो
0: पियम चुन के वो एर क्वारो
1: बीमारा मैं पाचू
0: बीमारा मैं पाचू
2: यू आर लम यू बी डू टेल यू नो का कम पे
1: ईटी यूनियो और रेडियो

0: और मैं पाचू
1: इटीविनो और रेडियो पियम ये करे वेर क्वारो
0: और मैं पाचू
1: इटीविनो और रेडियो

0: और मैं पाचू
1: इटीविनो और रेडियो यूं ये करे वेर क्वारो
0: अलीशान विनो को
1: मार मैं पाचू इटीविनो और रेडियो